0: नाम
1: बोलो सच्चे नाम सच्चे नाम सच्चे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए।

गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वाहे गुरु जी बोलो वाहे गुरु बोलो वाहे गुरु।